0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: Yes, good morning. It's your friend Antra over here. Radio Masti 24/7 Live पर मस्ती का मंत्रा चल रहा है। पहुंच चुके हैं 8 बजे के उस पार एंड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज 8 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 6 मिनट। यस, टीजर छोड़ के गई थी बट यस, खबर लेकर वापस आई हूँ। भाई जब हॉस्पिटल जाने की बात आती है ना, तो मोस्ट ऑफ अस थिंक कि बस जल्दी घर वापस पहुंच जाए एंड देन ऑफ कोर्स कम्स सिंगापुर। सिंगापुर इज ट्राइंग टू मेक दैट हैपन फॉर मोर एंड मोर पीपल। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इज एक्सपैंडिंग अपना हॉस्पिटल एट होम वाला प्रोग्राम, जहां पे एलिजिबल पेशेंट्स जो है दे कैन रिसीव हॉस्पिटल लेवल का ट्रीटमेंट विदाउट स्टेइंग इन अ हॉस्पिटल वार्ड। सो टेक्निकली यू आर स्टिल एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बट आपकी रिकवरी जो है हैपेंस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम। डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो है कंटिन्यू टू मॉनिटर थ्रू होम विजिट्स, टेली कंसल्टेशंस एंड रिमोट मॉनिटरिंग। नाउ ऑफ कोर्स ये हर पेशेंट के लिए नहीं है, इट इज मेंट फॉर क्लिनिकली स्टेबल पेशेंट्स हु आर सूटेबल फॉर होम बेस्ड ट्रीटमेंट। आइडिया जो है वो बहुत ही सिंपल है, इफ यू कैन recover safely at home, why occupy a hospital bed that someone with more serious condition might urgently need? And हाल ही में you know कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई है, this is one of the issues which has been faced, finding a hospital bed, and especially जब ज़्यादा critical patients को जो है उसकी ज़रूरत पड़े तो उनको मिल जाना चाहिए। Anyways, so सिर्फ homes ही नहीं है, Singapore is also taking specialist medical care directly into nursing homes. एक pilot program called Thrive showed really encouraging results. So एक after an year, unplanned hospital admissions and emergency visits dropped by about 1/3 and over 60% of residents didn't need hospital का admission at all during that pilot program. Honestly, this sounds like one of those ideas जहाँ पे everyone wins. Patients जो है, they get to recover in a familiar surrounding. Families spend less time traveling to the hospitals and hospitals can focus on people who actually need critical care. वैसे, if given a choice, what would you prefer? Recover in a hospital room या recover at home with doctors checking in on you? I am also checking in on you with that, right? Interesting thought, isn't it? Yeah. So, ab batao, aap kya sochte ho is bare mein? And yeah, 9518963, that's my number. Coming up is another very, very rahat deni wali awaz. That is Rahat Fateh Ali Khan sahab ke saath Aziz Kaur from the soundtrack of Simba. This is another beautiful one. Good morning.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स और मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
0: Welcome back, Radio Masti 24/7 Live पर Good Morning, Good Morning. Yes, yes, यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा अंतरा के साथ। एंड भाई मैं जो हूँ ये कवर देने से पहले मेरे को याद आ गया कि हाउ यू नो जो कागज वाले नोट होते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी जीन्स की पॉकेट में वो आप भूल गए हो। एंड यूजुअली इफ यू रिमेम्बर ये वाली बात ना, वो एक रुपए वाले, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, एक रुपए वाला नोट होता था या वो पांच रुपए वाला नोट होता था जो कहीं पे ऐसे फोल्ड फोल्ड फोल्ड फोल्ड करके एंड फिर जब मशीन से बाहर निकला तो फिर एकदम क्या हो गया है इसको। देर आर टाइम्स वेन वी हैव सुखाओ फाइड इट एज वेल सो। पता नहीं अचानक से याद आ गया यहाँ पर, बिकॉज खबर भी मैं कुछ इसी से रिलेट देने वाली हूँ। या सो कितनी बार आपके साथ भी ये हुआ ही हुआ होगा। वेल एनीवेज भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इज प्रिपेयरिंग टू पायलट, मैंने कहा था ना एक पायलट प्रोग्राम इंडिया में भी शुरू होने वाला है, सो हियर इट इज। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इज प्रिपेयरिंग टू पायलट 10 रुपए का नोट एंड 20 रुपए का जो है पॉलीमर नोट। सो इससे पहले जो है और लोग सोचना शुरू करें, मैं बताना चाहती हूँ नहीं, करंट पेपर नोट्स है जो इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। दिस इज ओनली अ ट्रायल टू सी हाउ दीज प्लास्टिक नोट्स परफॉर्म इन एवरी डे का इन यूज। इनफैक्ट RBI जो है इज प्लानिंग टू प्रिंट अराउंड 1 बिलियन 10 रुपीज के नोट्स एंड 1 बिलियन 20 रुपीज के नोट्स एज पार्ट ऑफ द पायलट प्रोग्राम। गोल सिंपल है, टेस्ट देम इन रियल लाइफ बिफोर टेकिंग एनी बिगर डिसीजन। Now, polymer क्यों? Because these notes are like 2 to 6 times more durable paper notes से ज़्यादा, water resistant है, easily आसानी से फटते नहीं है, they stay cleaner for longer and then can carry advanced security features like transparent windows and holograms हो गए and making them basically harder to counterfeit, right? Interesting बात ये है कि India is not the first country to try this. Countries like Australia, Canada, हमारे Singapore में ही देख लीजिए, right? New Zealand, the UK and many others, we have been using polymer currency for years. Though, of course, in Singapore, for example, जो colorful notes हमारे wallet पे हैं, कुछ ज़्यादा अगर हो जाए तो I don't mind, but भटक रही हूँ, मैं वापस आती हूँ। देखना ये है कि Indians जो हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो इसको accept कर पाते हैं इसीलिए या नहीं। वैसे भी हम लोग तो notes and our, मैं तो कहती हूँ किसी भी form में आ जाए, कभी मना नहीं करते, नहीं करते ना। बट वेल यहाँ पर जो है ये तो हो गई खबर की बात, अब करते हैं आने वाले, मेरा फोन ही गिर गया नीचे, आने वाले गाने की बात। तो हमारी सलमा डार्लिंग जो है अब वो बिल्कुल फ्री हो गई है, कह रही है कि अब मैंने सबको अपने अपनी जगहों पे भेज दिया है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की। और जब ऐसा कुछ होता है और मुझे पता चलता है, सो आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल, देर इज अ गाना विच आई थिंक सूट्स यू सलमा एंड सूट्स मी एज वेल, मैं अपने लिए भी गा सकती हूँ। तो दोनों अपने अपने लिए गाते हैं। दिस सॉन्ग गोज आउट टू ऑल द लवली लवली People, Radio Masti 24/7 Alive, very good morning.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
4: ट्रैफिक अपडेट।
5: वेल 8:34 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वक्त हो चला है। चलो सीधा चलते हैं साथ साथ सिंगापुर की सड़कों की तरफ और जानते हैं क्या है इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। हेवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन AYE टुवर्ड्स MCE बिटवीन बोना विस्ता एंड जरोंग टाउन हॉल रोड। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर टैंपनिस एवेन्यू 5 और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन बार्टली रोड टुवर्ड्स ब्राडल बिटवीन अपर सरंगुन रोड एंड अपर पाया लेबार। सो वेल ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज व्हाट गाना जबरिया जोड़ी यासर देसाई एंड अल्तमाश फरीदी की आवाज साथ साथ में। ये ढूंढ रहे हैं अखिया, it's quite shyful, but then yeah, that's the song coming up next and I will be right back just after this gana. Stay tuned.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
2: It's the Odyssey everybody is talking about, Radio Masti 24/7 Live par Antra aapke saath yahan chal raha hai Masti ka Bantra, and of course why not bhai, Odyssey jo hai India mein bhi under 13 plus ka inko mila hua hai rating, and 8 second ka jo hai kissing scene inhone kach kach kach kach kar diya hai. Ji ji bilkul bilkul inko अच्छा लेट इज नॉट इवन गो बैक आई सम टाइम सम रियली रियली टाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि 8 सेकेंड्स सर मतलब ओके एनीवेज लेट्स नॉट गो अबाउट दैट भाई. क्रिस्टोफर नोलन जो है एक हमारे यू नो एवरी ग्रेट डायरेक्टर हैज हिज ओन थिंग ऑफ डूइंग एंड गेटिंग इन टू द डिटेल्स. डिड यू नो दैट क्रिस्टोफर नोलन जो है उन्होंने 91 डेज लिए टू मेक ओडिसी लाइक द होल फिल्म एंड एवरी थिंग एंड देर इज सो मच of detailing, but that's him altogether. वहीं पे if you take हमारे संजय लीला भंसाली, we know about him कि उनके detailing में भी he, I think Love and War जो उनकी movie आने वाली है, 91 days he took only for a song, like the detailing of the 91 days and above. So yeah, they both are very very different. So apparently Christopher Nolan जो है ना उनका जो है कोई social media है ना उनका कोई email address है. In fact phone भी जो उन्होंने रखा हुआ है that is the very old flip phone, it's like a dummy thing which he has. And हाल ही में उनका कोई एक interview में देख रही थी and everybody went like what, how are you even surviving in this era जहाँ पर जो है हम लोग को ऐसा लगता है कि phone के बिना तो हमारी जिंदगी खत्म है, तबाह है पूरी की पूरी तरह से. सो ही सेड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी यू नो, सो अल्टीमेटली जो मुझ तक सही जो काम की बात है वो पहुंच जाता है. एंड ही सेज दैट इट्स अ गुड थिंग इन अ वे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई गेट इनटू दैट वर्ल्ड ऑफ ये डिजिटल मीडिया एंड एवरीथिंग आई विल जस्ट गेट लॉस्ट ओवर देयर. आई विल गेट लाइक सो डीप इनटू इट कि अभी जैसे मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ एंड आई एम थिंकिंग अबाउट यू नो आई गेट लॉस्ट इन माई इमेजिनेशन एंड थिंकिंग अबाउट हाउ टू गिव इट लाइक अ क्रिएटिव एंगल एंड एवरीथिंग, वो चीज शायद बंद हो जाए. Doesn't it make a lot of sense? A lot of people actually mein jo hai wo aisa karne lage hain. They have started keeping the very basic version of the phones with themselves, jisme sirf incoming, outgoing and normal messages ka aana jana hua hai. Uske alawa they don't want to keep anything. Actually food for thought hai ye. While I think about all of these things and also I planted that seed also in you, let's go. Ye ghanta karte hain wrap up and milte hain 9 baje ke us par on Radio Masti 24/7 Live. Good morning.

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live par.
2: All right, one of the finest movies of all time, let me tell you, on my list. Radio Masti 24/7 Live par 9 baje ke us par aap sabhi ka swagat hai. 9 bajkar ho chuke hain 6 minute. Masti Ka Mantra chal raha hai Antara ke saath, and I am talking about kahani. Vidya Balan ki kahani. In fact, the very, very first one. The impact it left on the audience and me personally was a huge one. Kahani 2, though the plot was interesting, but somehow, you know, thoda sa waisa sa lagne laga ki, okay, jo one mein baat thi, wo thoda sa, you know, ekdam alag hi feel aa gaya. And especially like, I loved the cinematography, how it had been shot, it had been planned, and how amazing Vidya Balan was in that movie. So, कई बार होता है ना, हम movies को लेके कहते हैं कि हम imagine ही नहीं कर सकते कि यार कहानी ऐसी एक movie में जिसमें Vidya Balan has been such a strong, you know, we cannot imagine anybody else in her place. जब बात अगर हम करें कहानी 3 की, but well, we might as well rethink about it because there are a lot of good actors अभी अगर देखा जाए तो. So, कहानी being one of the best thrillers made in Bollywood till date, iska commercial success as well as the critical acclaim is also the proof of that love. However, sequel kahani 2, it was a failure, it did not work that well. अब कहानी 3 जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है. नाउ कहानी एंड कहानी 2 वर लेड बाय विद्या बालन. हाउएवर कहानी 3 जो है इट्स गोइंग टू अंडरगो दिस मैसिव चेंज इन कास्ट एंड इट वुड बी लेड बाय नन अदर देन यामी गौतम. नाउ सुजॉय घोष जो है ही इज गोइंग टू रिटर्न एज द डायरेक्टर ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट. एंड समहाउ जब यामी गौतम का नाम सामने आया, सो आई वॉज लाइक दैट एक्चुअली सोचा जाए तो She can deliver. Nahin, bahut hi, it's a very weird feeling saying that. But somehow I know because have you seen Haq, jo Imran Hashmi ke saath Yami Gautam has done that movie. I think she has got that potential in herself jab is tarah ke roles ki baat aaye jahan pe, you know, it's the character speaking so loud to the audience. She has got that ability in herself. So, completely looking forward to this one, and maybe kahani ka franchise needed that kind of a change, or maybe not. I don't know. वो तो तभी पता चलेगा जब कहानी 3 हमारे सामने पेश की जाएगी. और जब भी होगा, of course we will watch that and we will let you know कि कैसी लगी. कैसी लगी पे तो I think I have started watching a lot of Hindi content again, and which is a good thing. You, मैं वो टाइप की व्यूअर हूँ कि एक चीज दिखा दो एंड यू कैन यू नो रोप मी इन टू इट. सो वेल, बताऊंगी क्या क्या देखा मैंने, बट फिलहाल के लिए चलते हैं हमारे जो है अगले म्यूजिकल ब्रेक की ओर. और सोनू निगम जब मुझे दिख रहे हैं तो आई थिंक आई शुड स्टॉप टॉकिंग एंड लेट हिम सिंग. या गुड मॉर्निंग.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Yes, it's Tuesday, which means कि आज शाम को ये शो भी बिल्कुल लेकर आएंगे हम लोग, एंड पढ़ेंगे ढेर सारी नई नई चिट्ठियां, ढेर सारे नए नए सिचुएशंस से जो है अपना रूबरू होगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ ट्रैप के साथ। यहाँ पर हो चुके हैं 9:22 भाई। ये मैं कह रही हूँ कि ट्रेंड की जब हवा चलती है तो एवरीबॉडी इज लाइक राइडिंग ऑन दैट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रेंड इज सपोज टू डू एज वेल, बट आई डोंट नो हाउ मच। आई थिंक जब मैंने बताया था कि ये हमारे रणवीर सिंह, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉम्बी थ्रिलर, एंड प्रलय नाम का जो है ये मूवी वो कर रहे हैं, एंड आई वाज आस्किंग दैट आई डोंट नो हाउ मच वी नीड अ जॉम्बी जॉनरा मूवी, एंड वन आई थिंक सलमान ने मेरे को बोला था कि यू नो देयर इज दिस कोरियन मूवी लाइक सीरीज आल्सो विद जॉम्बी, एंड आई आस्क्ड दैट वेदर अ पर्सन लाइक मी शुड वॉच इट और नॉट, एंड शी वाज लाइक नो रहने दो अंतरा, तुमसे ना ही हो पाएगा, एंड आई कंप्लीटली बिलीव यू, इफ यू थिंक दैट मुझसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, दैट इज फॉर श्योर।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: I love the music of this. It's quite nice. बहुत बहुत मनमोहक गाना सुबह सुबह 9:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। चलिए ट्रैफिक का अपडेट लेते हैं इस घंटे का। वही ब्रेक डाउन आपको मिलेगा CTE टालमेट वर्ड्स अगर आप जा रहे हैं AYE आफ्टर हैवलॉक रोड। वही ब्रेक डाउन की खबर ऑन सेंट्रल एक्सप्रेस वे टूवर्ड्स SLE आफ्टर मर्चेंट रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन BKE टूवर्ड्स PIE बिटवीन KJE एंड SLE। So, ये था इस खंड का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज जो मैं कह रही हूँ कि भाई ये

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत खानों की पिक्चर्स भेजी जा रही है. देर इज समथिंग बिटवीन द खाना एंड मी, इट जस्ट काइंड ऑफ फाइंड्स मी. एकदम बहुत रैंडम जगहों पर भी बिल्कुल मुझे ढूंढ ही लेता है. प्यार ही कुछ ऐसा है, क्या करे. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पर चढ़ा है मस्ती का मंत्रा. भाई सुबह 7 बजे से आपके साथ यहीं पे जुड़ी हुई हूँ, बनी हुई हूँ. लेकिन लेट्स गो एंड लेट्स सी दैट भाई रणबीर कपूर किस बात से मना कर रहे हैं. डिनाई कर दिया उन्होंने भाई धूम 4 की जो है. सी एवरीबडी Now this is my problem. या तो हर कोई जो है 90s का गाना उठा के रिक्रिएट कर रहा है, और या फिर जो है वो फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी बनाता हुआ जा रहा है. Why? Why? But well, coming back to this one. So reports which were saying that रणबीर कपूर जो है धूम 4 में उनको लिया गया है. And well, यशराज फिल्म्स ने कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि ऐसा कुछ है. और रणबीर कपूर जो है अब जहां कहीं भी जाते हैं कि सर आप ये वाला तो कर ही रहे हैं रामायण, लेकिन व्हाट अबाउट धूम 4, वाओ मतलब आप करने वाले हैं. रणबीर कपूर हैज फाइनली सेड कि भाई वाइल प्रमोटिंग ऑफ कोर्स हिज कमिंग अप जो मूवी आने वाली है रामायण. सो उन्होंने ये कहा कि भाई ना ऐसा नहीं होने वाला है. एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन रामायण एंड अनदर फिल्म कॉल्ड लव एंड वॉर विच इज बीइंग डायरेक्टेड बाय मिस्टर संजय लीला भंसाली. दैट शुड बी आउट ऑन January 24th नेक्स्ट ईयर. सो इंटरेस्टिंगली ये जो लिस्टिंग है इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, yeah, it's quite interesting. In fact, if I remember correctly, Animal का next part, like Animal Park also, जो है वो भी इन ये करने वाले हैं apparently. So, well, ठीक है भाई, करे तो अच्छा और होगा तो और भी अच्छा. But then, वही है कि अब धूम 4 में what next? है ना? क्या होने वाला है, किस तरह की चीजें आ रही है. एवरी धूम मूवी हैज सेट इट्स ओन स्टैंडर्ड, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे इट वाज द ओरिजिनल वन विच हैड जॉन इब्राहिम इन इट, और चाहे वो इनफैक्ट आमिर खान वाला भी हो. सो या व्हाट नेक्स्ट. नेक्स्ट इज गाना जो हमेशा हमारे पास रहता है. श्रीदी चौहान फन है खा खाएगा नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड मॉर्निंग.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: जिंदगी का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। यस यस इट्स दैट टाइम मस्ती का मंत्रा में जब अंतरा को थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा इतना आपको मिस ही नहीं करने दूंगी क्योंकि शाम को वापस से ऑफ कोर्स वी हैव आवर शो डियर मस्ती दिल से जो है मैं रेणुका और हमारी आशी नुपुर जो है वी कम एंड वी रियली टेक आवर टाइम टू रीड व्हाट यू लाइक पीपल राइट टू अस एंड देन बहुत ही एक सिंसियर एफर्ट है फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज अ टीम टू थिंक अबाउट इट वेरी डीपली एंड देन ट्राई एंड टॉक अबाउट इट एज वेल। सो वेल शाम को मिलेंगे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, लेकिन फिलहाल आज सुबह का ये जो सुहाना मौसम है फिलहाल के लिए स्टॉप नहीं करेंगे, इट विल कंटिन्यू बिकॉज इफ यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आपका मूड तो वैसे भी काफी सेटल्ड आउट ही रहेगा। एक घंटे का नॉन स्टॉप जस्ट म्यूजिक विच मीन्स अ म्यूजिक कैफे ब्रेक एंड देन ऑफकोर्स हमारी नुपुरवा जो है वो आ जाएगी विद हर मस्ती मॉर्निंग्स शो। सो या आई विल सी यू शाम को एंड फॉर द रेस्ट आई थिंक गो आउट हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड एंड you know just smile and make sure that you make someone else also smile, just give them a free compliment just like that, like koi reason nahi kabhi kabhi pata hai humko pata hi nahi hota hai ki how much amazing magical power that one thing you know a person has when you for no reason at all compliment someone else and make someone's day. Yeah, so yeah, सोचना इस बारे में और मन करे तो कर भी लेना, है ना। हम कौन होते हैं ज्यादा कुछ फोर्स करने वाले। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं डियर मस्ती दिल से फिर शाम को रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंड ट्राई साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
5: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: जाता था कि जो टेप्स पर नहीं हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: गाना चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
3: All is well.
2: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
5: Check it out.
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: Sometimes you feel कि यार ये क्या है, हम एक लूप में फंस गए हैं क्या। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऐसा करो वैसा करो, फिर आ जाओ। आपको पता है ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी पर्सनल टाइम, सोशल लाइफ के लिए टाइम निकालना बंद कर दिया है। तब आता है ये पॉइंट। एनीवेज, मैं आरजे अनुपमा सी मॉर्निंग शो पर वंस अगेन मुलाकात करने आ चुकी है। एंड एकदम टेस्टेड एंड ट्रायल्ड बात बताती हूँ मैं आपको। हमेशा मुझे भी ऐसा लगता था लाइफ कितनी मोनोटोनस हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर मैंने इसमें थोड़े से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एक्सपेरिमेंट बिठाए कि भाई वो जो लोग हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो अक्सर हमें कॉल कर देते हैं कि चलो चलो चलो हैव अ डिनर, चलो चलो चलो हैव दिस हैव दैट, चलते हैं सिरानगुन रोड पर सबसे फेमस वाली आइसक्रीम खाने एंड ऑल दैट, आप ना इस ग्रुप से पीछे रह गए हो। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही टारगेट नजर आ रहा है, दैट इज योर जॉब, योर बिजनेस, योर ये यो वो, ऐसा वैसा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो चलो भाई इससे थोड़ा उभरते हैं और आज की गुड वाली मॉर्निंग और ज्यादा मॉर्निंग बनाते हैं। हाँ, मैं आरजे अनुपमा मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Sanjana! Sanjana!
2: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं.
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ, यही तो है सब निशानियां.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: हाय हाय, जितनी फिक्र हम सोशल मीडिया पर एज अ फैन एक्टर्स के लिए दिखाते हैं, क्या इतनी फिक्र घर पर परिवार के लिए दिखाते हैं? अगर दिखाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिखाते हैं तो इस बात पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, एक एक्टर है जिनकी तबीयत हल्की सी भी बिगड़ती है ना, सबके प्राण निकल जाते हैं यार। एंड ही इज नन अदर देन अमिताभ बच्चन। रिसेंटली ये हॉस्पिटल गए, प्रॉपर एडमिट हुए और लोगों ने कंसर्न दिखाना शुरू कर दिया, तो पता चला कि ये रूटीन चेकअप था। इन्होंने खुद भी ये चीजें सोशल मीडिया पे डालकर बताई। ओ माई गॉड, वरना आपको पता है ना, आज के टाइम पर र्यूमर्स जो है ना वो सच से भी ज्यादा तेजी से दौड़ता है, राइट? आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।

0: songs.
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। अच्छा जी, बात ये है कि बात यहाँ तक आ गई है कि लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि उन्हें नॉर्मल डिफरेंसेस नहीं, क्रिएटिव डिफरेंसेस फील होते ही प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। हाँ जी, मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और बहुत सारे एक्टर्स में एक एक्टर है आमिर खान। इनकी अगर क्रिएटिविटी किसी फिल्म मेकर ने एक्सेप्ट नहीं करी ना, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो छोड़ देते हैं। और रिसेंटली कुछ ऐसे ही हुआ, इंडिया का द वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म भारत पे, इसके जो को फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर, उनकी लाइफ के ऊपर बायोपिक मूवी के लिए इनको रिक्रूट किया गया था, बट क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है। बिकॉज आमिर खान वो एक्टर नहीं है जिन्हें स्क्रिप्ट दे दी जाए और वो पढ़कर आ जाए, ना ना ना, वो पूरा इनपुट देते हैं और उनके हिसाब से जब चीजें नहीं चलती हैं तो वो प्रोजेक्ट साइड भी कर देते हैं। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, साइड बाय साइड बहुत प्यारे गाने जस्ट फॉर यू।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: लीजिए जी, वो वक्त आ गया है जब मैं इधर से सवाल की बैटिंग करूंगी और उधर से आप ऑफ कोर्स बॉलिंग करेंगे जवाब की। बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, हर रोज की तरह एक फेमस मूवी का एक फेमस सा डायलॉग यहाँ पे प्ले कर रही हूँ और ये जो डायलॉग है ना, वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी का है जिसने इतने अवार्ड जीते कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज के टाइम पे अगर मॉनसून में थोड़ा सा भी सूखापन आता है ना, तो लोग इस मूवी का गाना प्ले करने लगते हैं। चलो, बहुत हिंट हो गई है, अब डायलॉग सुनो।
3: ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेला था, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली। परों के वास्ते मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा।
2: बिल्कुल, अगर आप पहचान गए हैं इस डायलॉग को और इस डायलॉग के पीछे छिपी हुई मूवी के नाम को, तो क्विकली बता दो मेरी जान। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे DM करके आई एम वेटिंग आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

कुछ अच्छा अचीव नहीं कर लेते हो ना, जब तक आप बहुत सारी ट्रॉफीज नहीं ग्रैब कर लेते हो ना, तब तक आप पर कोई विश्वास करता नहीं है। बिकॉज ये जमाना बहुत ही खराब है। आप काम कर लेते हो, इसको दिखाने के लिए भी आपको काम करके दिखाना पड़ता है। और जब तक आपकी पॉपुलैरिटी लेवल एक अलग तरह से नहीं निकल कर आती ना, तब तक लोग आपको समझते ही नहीं है कुछ। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड द पॉइंट इज कि यही ख्याल जितने सारे मैंने आपको बताए ना, ये सारे आए थे विक्रांत मैसी के मन में। आपने बिल्कुल सही समझा है मेरी जान। विक्रांत मैसी जो कि 12th फेल मूवी की वजह से नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी में विनर भी रह चुके हैं, इनका कुछ ऐसा कहना है कि जब ये 12th फेल मूवी के लिए एक्टिंग करने जा रहे थे तो फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा सवाल था, कोई तुम्हें क्यों देखने आएगा बड़े पर्दे पर, और तुम्हें हम लीड रोल की तरह दे देंगे तो कोई क्या सच में देखेगा। तो इनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठे थे अपनी एक्टिंग को लेकर, बिकॉज हमेशा इन्होंने फिल्मों में, सीरियल्स में, या किसी टीवी सीरीज में, या किसी ओटीटी सीरीज में बहुत छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इम्पैक्टफुल रोल किए। अब इतना बड़ा रोल और इतना सारा प्रेशर इनके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा था। एनीवेज, इन्होंने ये निभाया, फिल्म मेकर्स को प्रूव किया कि विक्रांत मैसी का रिक्रूटमेंट वॉज अ सुपर्ब आइडिया। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: भाई बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि जब अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट लिया था तो उन्होंने क्या बोला था कि वो गाने जो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिनके कमिटमेंट मैंने दे दिए हैं, मैं सिर्फ वही गाने गाकर बॉलीवुड से मुंह फेर लूंगा, बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा। लेकिन रिसेंटली बहुत सारे र्यूमर्स निकल कर आए कि अरिजीत सिंह वापसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आवारापन 2 मूवी में ये एक गाना, ये आवारापन, राइट, ये एक गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सुनकर लोगों को लगा कि नहीं, ये वापसी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। अरिजीत सिंह की टीम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि फिल्मों में वापसी तो नहीं होने वाली बॉस। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड मेरी वापसी तो चलती रहेगी, बस गानों के उस पार कुछ और बातें और फिर गाने।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? आप स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सो मी यार। देखो, स्किल्स होना आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम शब्दों में अपनी बातें कहने का स्किल्स। आपको क्या लगता है, हमारे अंदर ये स्किल्स है? तभी तो देखो सालों से आपको जोड़ कर रखे हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई इतने सारे लोगों ने जब डिमांड किया तो मस्ती मीडिया नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस कर दिया है द आरजे अकेडमी। 12 आवर्स का आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ को समझते हुए कस्टमाइज तरीके से, एंड आप उसे समझिए, सीखिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, एंड अगर आपने बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो हम आरजेस की तरह आपको लाइव शो पर बोलने का मौका भी मिल जाएगा। सो डेफिनेटली डू ज्वाइन द आरजे अकेडमी बाय मस्ती मीडिया नेटवर्क। इसके लिए ईमेल कीजिए info@radiomasti.com.sg। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: वो कहते हैं ना, जिस दिन मेहमान आने वाले होते हैं, जिस दिन बढ़िया खाना बनाना होता है, उस दिन वक्त बहुत ज्यादा लगता है। हाँ जी, आराम आराम से काम करना पड़ता है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर मैं बात करूं आराम आराम से अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की, तो शाहरुख खान ने इस बार कुछ ऐसा ही कमाल करने का सोच लिया है। हाँ जी, उनकी वन ऑफ द एक्शन थ्रिलर मूवी किंग राइट, ये अपने फाइनल फेज ऑफ प्रोडक्शन में चल रही है। और रिसेंटली इसका शूट जो है ना, यूएस में एंड साउथ अमेरिका में चल रहा है, और ऑलमोस्ट अगस्त में इसका शूट कंप्लीट हो जाएगा। वन ऑफ द एक्सपेंसिव मूवी कही जा रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सरप्राइजेस इसमें दिखाई देने वाले हैं, और इसे ना हॉलीवुड के लेवल से कंपेयर भी किया जा रहा है। लेट्स सी, बहुत सारे

एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड जो कर रहा है और अपनी बॉलीवुड गिरी छोड़कर थोड़ा सा हॉलीवुड गिरी में जा रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो रहा है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: भाई मूवी आने को है और धीरे धीरे कैरेक्टर्स इसमें अभी भी जोड़े जा रहे। बट आप सोचिए, एक मूवी इतने हेवी बजट पे बनाई जा रही है कि उसमें एक्टर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। और आपको पता है ना, जब एक मूवी में बहुत सारे किरदार जोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारे चेहरे जोड़ दिए जाते हैं, तो उसको निभाना, उसको हैंडल करना कितना रिस्की हो जाता है। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और अगर मैं बात करूं रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी एंड यश स्टारर रामायण मूवी की, तो इस दिवाली और अगली दिवाली दोनों के लिए इसे हाफ हाफ प्लान किया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। और बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है इस मूवी से कि ये जो इतना खर्चा करके हमें दिखाना चाह रहे हैं वो शायद हमें सच में अच्छा लगेगा। बट इसमें रिसेंटली एक नई एंट्री हुई है अनुपम खेर जी की, हां जी, एज अ जटायु वो इस मूवी में नजर आने वाले हैं। वही मुझे लग रहा है कि मूवी की रिलीजिंग डेट करीब आ रही है और अभी भी इसमें कैरेक्टर जोड़े जा रहे हैं। हाँ, आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: जब भी मैं कोई सुपर बाइक सिंगापुर की सड़कों पर देखती हूँ ना, तो मुझे एकदम बॉलीवुड की याद आ जाती है। एंड उसमें भी लंबे लंबे बालों के साथ जॉन अब्राहम जो धूम मूवी में नजर आए थे ना, आय हाय, इकलौता चोर है जिसे मैंने बहुत ज्यादा पसंद किया था। हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और जॉन अब्राहम के ऑफकोर्स हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, पर हमें ये प्रोजेक्ट धूम वाला जो है ना इम्प्रेस कर गया था। एंड जॉन अब्राहम जो है वो फिटनेस लाइन में एज अ बिजनेसमैन भी है, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। ये एक्टर्स जो है वो सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते फॉर रेवेन्यू। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। रिसेंटली जॉन अब्राहम ने मुंबई में 84 करोड़ का एक बंगलो जो है ना वो अपने नाम करा लिया है। क्या बात है भाई, आजकल ये जो एक्टर्स है ना अलग ही तरह के बेंचमार्क सेट करते हुए जा रहे हैं। हां जी, तो रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर बातों के बेंचमार्क और बेहतरीन गाने डेफिनेटली मिल रहे हैं मेरी जान, सो डोंट गो एनीवेयर। आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वो होता है ना कोई इंसान आपसे एक ही सवाल बार बार बार बार बार बार बार बार पूछता है तो आप बहुत ज्यादा अनॉय हो जाते हो। आप बस उसी सवाल के अलावा हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो अगर आपकी मुलाकात सलमान खान से हो तो गलती से भी मत पूछ लेना कि भाई जरा बताना मातृभूमि मूवी कब रिलीज होने वाली है। हाँ जी, मैं आरजे नुपुर मस्ती मानिंग चोपड़ा आपके साथ। भाई अभी रिसेंटली सलमान खान ने आस्क मी एनीथिंग काइंड ऑफ स्टफ जो है वो सोशल मीडिया पे भी किया था और वो फैन से मिलते भी रहते हैं, सवाल जवाब अलग अलग जगह उनसे पूछे ही जाते हैं। तो रिसेंटली कोई उनसे कुछ सवाल पूछे उससे पहले सलमान खान ने कह दिया कि मुझसे बस ये मत पूछना कि मेरी मूवी मातृभूमि कब रिलीज होने वाली है, मैं इसके अलावा हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। भाई साहब, और सल्लू भाई जब नाराज होते हैं ना तो अच्छे वाले नाराज होते हैं, रूस जाते हैं। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: एक ऐसी मूवी जिसने क्रिकेट की अहमियत इंडिया के बीच और ज्यादा जगा दी थी। हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग सुनाकर पूछा था कि कौन सी मूवी से है ये डायलॉग, और वो डायलॉग क्या था?
4: ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली, और उनके वास्ते मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना, ये डायलॉग था लगान मूवी से। 2001 में ये मूवी आई थी, अवार्ड विनिंग मूवी थी यार। एंड आपको बताना चाहूंगी, इसका शूट हुआ था गुजरात के कच्छ में, ठीक है, और इस मूवी के शूट के 6 महीने बाद ही उस एरिया में जहाँ पे इसका शूट हुआ था ना, वहाँ अर्थक्वेक आ गया था और वहाँ पे हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था जिसमें इस मूवी को शूट किया गया था। और जब इस मूवी का फर्स्ट एडिट निकाला गया तो वो 7 hours 30 minutes का था, इतनी बड़ी। एनीवेज, इस मूवी में आमिर खान ने जो एक सिक्स लगाया था ना क्रिकेट खेलते हुए, और उस दौरान जो हजारों की भीड़ बैठी थी और जो भागी थी, वो बहुत सारा स्टफ था, वो रियल भीड़ थी। हाँ, और ये 30 साल के इतिहास में बॉलीवुड की वो पहली मूवी थी जिसमें आवाज एकदम अच्छे से सिंक करके डब करके लगाई गई थी। जर्मनी का जो सॉफ्टवेयर था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो डेफिनेटली बहुत सारे खास पल थे इस मूवी के जिसने इसे और ज्यादा खास बना दिया। मैं आज पर ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। ऐसे ही सवाल और जवाब चलते रहते हैं, डेफिनेटली अपनी मुलाकात होगी बहुत जल्द। चलते ना, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
4: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste bahan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
7: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: भट्ट महेश भट्ट।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
2: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ। पहुंचता कौन है? चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
4: रहो। मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स. योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन. फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live par.
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली on Radio Masti 24/7 Live.
2: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi, sab kuch sirf masti hangout.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे जान पहले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले है। जोश में रहो।
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: किन्निया किन्निया गल्ला वे तू करदा है।

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above, selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
0: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
5: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
6: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
7: Check it out.

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में, वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सभी का स्वागत है डियर मस्ती दिल से हमारे इस शो के एक नए एपिसोड पर। पता है आजकल एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, इट्स कॉल्ड बीइंग ओवरवेल्म्ड। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग एक्चुअली ओवरवेल्म्ड होते हैं, बस हमें उसका नाम नहीं पता होता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता है और बिना वजह इरिटेशन हो जाती है, या किसी दिन आपको ये लगता है कि आज किसी से बात करने का मन नहीं है, या फिर आप एकदम चुप हो जाते हैं और खुद भी नहीं समझ पाते कि हुआ क्या है। हम सोचते हैं शायद मेरा मूड खराब है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या रहा हूँ, लेकिन कई बार प्रॉब्लम मूड नहीं होता, प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग और दिल ने एक साथ बहुत कुछ उठा रखा होता है। ऑफिस, घर, पेरेंट्स, किड्स, रिलेशनशिप, सोशलाइजिंग, हेल्थ, फ्यूचर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी हमें ये भी रियलाइज नहीं होता कि हम इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रखे हैं, जब तक हम किसी पर अननेसेसरली गुस्सा ना कर दे, या बिना बात के रो ना दे, या एक दिन बस चुपचाप बैठकर सोचने ना लग जाए मैं ठीक हूं ना। और शायद सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन ढूंढना नहीं होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है खुद से कहना हाँ आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, एक्सेप्टेंस। एंड बिलीव मी, अपनी फीलिंग को नाम देना ही कभी कभी उसे हल्का कर देता है। और शायद इसीलिए हमने डियर मस्ती दिल से को क्रिएट किया, एक ऐसा शो जहां आपको परफेक्ट बनना नहीं है, स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं है, सबके सामने स्माइल करना नहीं है, बस दिल की बात कहनी है। यहाँ आप अपनी कहानी हमारे साथ लेटर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, अपने सिचुएशंस पर शेयर कर सकते हैं, कोई जजमेंट्स नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ इमोशंस, और उन्हें समझने के लिए एक सिंसियर कोशिश। आपके लिए हम डियर मस्ती और हमारे लिए आप हमारे डियर लिसनर। तो अगर आप अपना दिल हल्का करना चाहते हैं तो आप भी हमें लिख सकते हैं 9158963 पर, क्योंकि कभी कभी एक मैसेज या एक लेटर लिखना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। तो चलिए एक और शाम, एक और सफर दिल की बातों के नाम, यह डियर मस्ती दिल से ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आती हूँ बस इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ यहाँ पर अंतरा आपके साथ। चलिए हमारी आज की सबसे पहली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड ने मेरे मुंह पे झूठ बोला और मैंने उसकी बात मान ली। बाद में मुझे सच का पता चला, लेकिन जब वही बात दोबारा उठी तब भी उसने सच एक्सेप्ट करने के बजाय फिर से मुझसे झूठ बोला। सबसे अजीब बात यह है कि पूरी सिचुएशन मेरे बारे में ही थी, व्यूमर भी उसी ने फैलाया, और अब लोगों के सामने वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सबसे बड़ी मेरी वेलविशर और सेवियर है। मैं समझ नहीं पा रही ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए।
1: ओके,
0: डियर लिसनर, कभी नोटिस किया है, झूठ सिर्फ इसलिए हर्ट नहीं करता क्योंकि वो झूठ होता है, झूठ इसलिए हर्ट करता है क्योंकि वो ट्रस्ट के सामने बोला गया। हाँ, राइट। और जब वो किसी अपने से आए तो और भी ज्यादा यू नो हर्ट होता है। मुझे लगता है इस लेटर में प्रॉब्लम र्यूमर से भी बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान को आप सच बोलने लायक समझते थे उसने आपको सच के लायक समझा ही नहीं, और उसके बाद जब वही इंसान मास्क पहन के आपका सपोर्टर बनने की एक्टिंग करे तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाती है। आप सोचने लगते हो कि क्या मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ या रही हूँ, क्या मुझे ही कन्फ्रंट करना चाहिए या बस दूर हो जाना चाहिए। और एक और इमोशन भी आता है जो बहुत कम लोग एडमिट करते हैं, बिट्रेल के बाद इंसान को दूसरों से कम खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतना ट्रस्ट क्यों किया, राइट? मैंने क्यों नहीं पहचाना। एंड बिलीव मी, ये फीलिंग बहुत नेचुरल है, लेकिन हर झूठ का जवाब उसी वक्त देना जरूरी हो ऐसा भी नहीं होता। तो अगर मैं आपकी जगह होती, क्या मैं उसे कन्फ्रंट करती या क्या हर झूठ को एक्सपोज कर देती? या कभी कभी चुपचाप किसी को अपनी लाइफ से बाहर कर देना ही काफी होता है। लेट मी गिव इट अ थॉट। मैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं इस सिचुएशन को किस हिसाब से और किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: मैं डंडा लेकर आऊंगा।
1: डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी।
0: मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा,
1: मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी,
0: मैं आरी से कट

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

डियर मस्ती दिल से, जी हाँ, उसी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ यहाँ पर अंतरा आपके साथ। एंड अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे एक डियर लिसनर ने जो है उनका चिट्ठी मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि उनकी एक फ्रेंड ने उनके मुंह पर झूठ बोला, बाद में उन्हें सच का पता चल गया, लेकिन जब बात दोबारा उठी तब भी उस फ्रेंड ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। सबसे दुख की बात उनको ये लगी कि ये र्यूमर भी उन्हीं उसी दोस्त का फैलाया हुआ था और आज वही लोगों के सामने उनकी वेलविशर और सेवियर बनके घूम रही है। उनका सवाल था ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए, क्या मुझे कन्फ्रंट करना चाहिए कि नहीं। सो माई डियर लिस्टनर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ झूठ से नहीं हुई है, कैरेक्टर की एक्टिंग से हुई है। जब कोई इंसान गलती करता है और बाद में कहता है कि सॉरी प्लीज मुझसे गलती हो गई, तो यस वी फील बैड, दर्द होता है, लेकिन हीलिंग की पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन जब कोई इंसान सच जानते हुए भी झूठ को मेंटेन करता रहे और ऊपर से खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करे, तो प्रॉब्लम सिर्फ ट्रस्ट की नहीं रहती, प्रॉब्लम इंटीग्रिटी की हो जाती है। नहीं, और यहाँ मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, हम अक्सर ना कन्फ्रंटेशन को सोल्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन का पर्पस क्या है ये पहले डिसाइड करना जरूरी है। अगर आप कन्फ्रंट इसलिए करना चाहते हैं कि सामने वाला फाइनली सच बोल दे, तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाए, क्योंकि जो इंसान इतने दिन से झूठ को प्रोटेक्ट कर रहा है वही अचानक से वो आज या जब कन्फ्रंट करे तो सच चूज कर ले। लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं और अपनी बाउंड्री क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि मुझे सच पता है, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ट्रस्ट के साथ मैंने दोस्ती निभाई उसे कुछ अलग तरीके से हैंडल किया गया और उसका दुख मुझे रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहती हूँ पूरी बात से। सो कोई एविडेंस की लिस्ट नहीं दी, कोई डिबेट नहीं किया, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश की। ट्रूथ मतलब सच्चाई को प्रूव करने और पीस को प्रोटेक्ट करने में कभी कभी एक ही चीज को चूज करना पड़ता है। हर बार सच जीत जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर बार आप अपनी डिग्निटी जो है क्लैरिटी से बिल्कुल बचा सकते हैं और वही सबसे ज्यादा जरूरी है, पीस ऑफ योर ओन माइंड। एक और बात, कभी आपने अपने आप को ये मत कहिए कि मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने इस पर ट्रस्ट किया। नहीं, ट्रस्ट करना वीकनेस नहीं है, झूठ बोलना उनकी चॉइस थी, उस चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, आपकी नहीं, राइट। सो माई डियर लिसनर, हर दोस्ती जिंदगी भर के लिए नहीं होती, कुछ दोस्त हमें कंपेनियनशिप देते हैं और कुछ बहुत जरूरी लेसन्स, और फिर दोनों ही अपनी जगह पे वैल्यूबल भी होते हैं। होप दिस हेल्प्स। यह थी मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ। जी हां, अगली चिट्ठी की तरफ बढ़े, चलिए साथ में पढ़ते हैं। डियर मस्ती, मैंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है। मेरे हस्बैंड ऑफिस टूर पे गए हुए हैं और उनके पेरेंट्स मेरे साथ रहने आ गए हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आई एम ऑलरेडी इन टू माई मदरहुड और पोस्टमार्टम इमोशन से डील कर रही हूँ। उसके ऊपर से मुझे हर वक्त बताया जाता है, ये करो, ये मत करो, बेबी को ऐसे उठाओ, ऐसे मत खिलाओ। कभी कभी लगता है बस अपना बैग पैक करूँ और अपने पेरेंट्स के घर चली जाऊँ। मुझे पता है मैं फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल यही मेरी रियालिटी है। ओके, काम डाउन, काम डाउन माय डियर लिसनर। सबसे पहले तो जो आप फील कर रही हैं, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। एंड अगेन, आई स्टार्टेड माय शो टुडे विद दिस फीलिंग कॉल्ड बीइंग ओवरवेल्ड, व्हिच वी मोस्ट ऑफ द टाइम डू नॉट एक्सेप्ट और रियलाइज, बिकॉज स्कोप नहीं रहता है अक्सर उसको सोचने का। सो ये अक्सर देखा गया है कि जब एक बेबी घर में आता है तो सबका फोकस बेबी पे जाता है, लेकिन एक नई माँ को जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सांस लेने की, उसके हार्मोन्स अभी सेटल हो रहे होते हैं, बॉडी रिकवर कर रही होती है, नींद नहीं पूरी हो रही होती है, इमोशंस हर दिन नए होते हैं, उसी वक्त हर तरफ से एडवाइस आने लगती है कि ये करो, ये मत करो, हमारे टाइम में ऐसा होता था, और धीरे धीरे राइट हेल्प भी कभी कभी प्रेशर की जैसे फील होने लगती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके इन-लॉज गलत हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपकी मदद करना चाहते हों, और पेरेंटिंग में हर जनरेशन को लगता है कि उनका तरीका ही सही है और वो अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपका अपना तरीका ढूंढना भी उतना ही नॉर्मल है। सो माई डियर लिसनर, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और इसी सोच में हम चुप रह जाते हैं। लेकिन जितनी देर आप चुप रहेंगे उतना ही ये बोझ आपके दिल पर बढ़ता हुआ जाएगा, और मुझे लगता है आज वही हो रहा है। आप एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रही हैं, एक नई माँ बनना, एक अच्छी बहू बनना, सबको खुश रखना, किसी को हर्ट नहीं करना, बट लेट मी टेल यू अ ट्रूथ, एक ही वक्त पर सब कुछ परफेक्ट रखना प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है। और इस पूरी सिचुएशन में अगर सबसे ज्यादा कोई अनकंफर्टेबल है तो वो आप ही है। हो सकता है आपके इन-लॉज को अंदाजा ही ना हो कि आप इतना ओवरवेल्म फील कर रही हैं। उनके लिए शायद वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, उनके हिसाब से एवरीथिंग इज करेक्ट। इसलिए सबसे पहले अपने हस्बैंड से खुलकर बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आप इमोशनली किस फेज से गुजर रही हैं, और अगर आपको लगता है कि इस बात को आप खुद भी प्यार से कह सकती हैं तो अपने इन-लॉज से भी कामली बात कर सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प जरूर अप्रिशिएट करती हूँ, बस कभी कभी मुझे थोड़ा अपने हिसाब से जो है अपना टाइम स्पेंड करने दे, मैं भी सीख रही हूँ और मैं सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स से भी सीखना चाहती हूँ, अपनी गलतियां खुद करना चाहती हूँ। सी, कभी कभी लोग बदलते नहीं, बस उन्हें पता ही नहीं होता है सामने वाला फील क्या कर रहा है। सो माई डियर लिसनर, बाउंड्रीज दीवार नहीं होती है, एंड आई कीप टेलिंग दिस टू एवरी सिंगल पर्सन बिकॉज आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, कि बाउंड्रीज दीवार नहीं होती हैं। बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को हेल्दी बना के रखती हैं, और जितना जल्दी प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं उतनी ही आसानी से रिलेशनशिप्स भी बनने लगती हैं। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप यू फील बेटर, एंड आई होप दिस एंशियसनेस एंड ये फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड आपकी बहुत जल्द जो है सबसाइड कर दे, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द ब्यूटिफुल थिंग कॉल्ड मदरहुड रादर देन गेटिंग वरीड अबाउट इट।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

एंड फाइनली इंतजार मेरा खत्म हुआ और मैं यहाँ पर आ गई रेडियो मस्ती 24/7 पर. मैं रेणुका आपके साथ, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर मस्ती. दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है, और मैं वो अनजाना इंसान बनके इस समय आपके पास आ चुकी हूँ. आपको कभी किसी ने ये कहा है कि यार तुम बहुत बदल गए हो या बदल गई हो? कहा है? जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है ना, मोस्ट ऑफ अस बिकम अ लिटिल इम्पेशेंट. आपको ऐसा नहीं लगता? छोटी छोटी चीजें इरिटेट करने लग जाती हैं. ट्रैफिक है, नॉइज है, जो लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, या कोई मैसेज बड़ी देर तक आता नहीं है, या एक चाबी इधर उधर हो जाती है. यू नो, देन समबडी समडे जस्ट लुक्स एट अस एंड सेज, यार तू पहले ऐसा नहीं था, यू हैव चेंज्ड, राइट? इट्स नॉट बिकॉज हम बुरे इंसान बन गए हैं, बट मे बी बिकॉज वी सिंपली वेरी टायर्ड, है ना. इतना टाइम बीत गया है कि हम जगल कर रहे हैं अपने करियर्स, बच्चों का ध्यान रखना, एजिंग पेरेंट्स, बिल्स पे करना, मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, ऑलवेज बीइंग दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड फिर कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिचार्ज करना तो भूल ही जाते हैं. और कभी कभी इरिटेशन जो होती है ना, वो गुस्सा नहीं होता, इट्स अक्यूमुलेटेड एग्जॉशन, इट्स इमोशंस दैट हैवंट फाउंड वर्ड्स, इट्स द स्ट्रेस दैट हैजंट फाउंड रेस्ट. एंड बिफोर हम अपने आप को कुछ कहें, हमें लोग टैग कर देते हैं गुस्से वाला इंसान. चलिए, लेट्स आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली स्लोड डाउन? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग जस्ट फॉर योरसेल्फ? When was the last time you allowed yourself to simply breathe? क्योंकि क्या होता है ना, the people we love don't deserve the stress we collected somewhere else. और हम भी ये नहीं deserve करते हैं. तो आज ये काम कीजिए, be a little gentler with your family, with your colleagues, and most importantly with yourself. Okay? क्योंकि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, doesn't mean that we need to grow shorter in patience. Sometimes all it takes is a little more kindness towards that person जो आपको इस time शीशे में दिख रहा है. All right. छोटा सा ब्रेक, आई विल बी बैक आफ्टर दिस. एंड ऑफ कोर्स मेरे सवाल, ओहो पूछिए मत, फिर मुझे मुश्किल सा टेस्ट मिला है आज. देखते हैं मैं जवाब दे पाती हूँ या नहीं. अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज रेणुका विद यू.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर ये चाहत ही खत्म हो जाएगी तो शायद आप एक स्टेप भी आगे ना बढ़ पाए। हेलो हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, सारी चीजें ना दिल और दिमाग के खेल पर डिपेंड होती है। आप इनको जितना ट्रेंड कर देंगे आप लाइफ में उतना आगे बढ़ते जाएंगे, मूव ऑन करते जाएंगे। डेफिनेटली ऑन दिस नोट मेरे हाथों में एक लेटर आ चुका है जिसमें कोई अटक सा गया है। लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से, मेरे संग पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बुरा एक्सीडेंट देख लिया और वो देखने के बाद ना मैं खुद गाड़ी चला पा रही हूँ, ना मैं किसी गाड़ी में बैठ पा रही हूँ। घर वाले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी करते हैं बट ये डर मेरे मन में बैठ गया है, तो व्हाट शुड आई डू। एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर लिखकर भेजा है, सबसे पहले बोलना चाहूंगी आई नो ऐसी चीजें देखना हमारे लिए वो होते ना कि लाइफ की सबसे फियरेस्ट मेमोरी में कैप्चर हो जाते हैं, और डर बैठना स्वाभाविक है। आपकी जगह कोई और होता उसके साथ भी ऐसा होता, बट इट्स अ लाइफ, आपको इसमें उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, धूप छाव सब देखना पड़ेगा, और देखने के साथ अपने दिल और दिमाग दोनों को रेडी करना पड़ेगा कि लाइफ का मतलब आगे बढ़ना ही होता है, ना कि मन में डर रखना होता है। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस गाड़ी में बैठे गए तो पहले ही बोल दें कि भाई सारे रूल्स फॉलो करना, रैश ड्राइविंग मत करना, या खुद आप जब सीट पे बैठे तब भी आप इन बातों का ध्यान रखें, राइट?

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना।

0: यू नो व्हाट, आप अपनी पूरी दुनिया से जीत सकते हो लेकिन अपने घर वालों से हार कर ही मजा आता है यार। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे नूपुर के साथ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू चल रही है एंड हम सभी आरजेस कोशिश करते हैं कि यहाँ जो आपके लेटर्स आए हैं उनमें जो सवाल, उनमें जो बातें हैं वो हम यहाँ म्यूचुअली एक्सप्रेस कर पाए। एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मेरा बेटा अब टीनेज में एंटर कर गया है। वो बार बार मुझसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ सोलो ट्रिप पर जाना है, अपने बर्थडे ट्रिप को और ज़्यादा स्पेशल बनाना है, लेकिन मैं जानबूझ के मना कर रही हूँ, टाल रही हूँ इस चीज़ को बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है और स्पेशली अपने बच्चे को अकेले भेजने से। ना ना ना ना ना ना। सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, ये एक सिर्फ इंसान ने नहीं भेजा है, ये एक मॉम ने भेजा है। एक मॉम की फिक्र जो है ना वो इनके शब्दों में नजर आ रही है। सो आप जिन्होंने मुझे लेटर दिया है, आप डेफिनेटली सही सोच रही हो, सही डायरेक्शन में सोच रही हो, लेकिन अब आप मुझे बताइए, आप भी तो बहुत सारी ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट टाइम जो है ना अपना डर मिटाकर आगे बढ़ी। हाँ, आपने आज भी बहुत सारी ट्रैवलिंग अकेले कर ली होगी और आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर समझदारी नहीं थी, आपके अंदर थी ना, तो इनडायरेक्टली आपके बच्चे ने भी वो समझदारी आपसे ग्रैब की है। और अगर आपको डाउट है तो आप उसे बैठ कर वो सारी चीज़ें बताइए, गाइड कीजिए और उसके संग कॉल पर कनेक्टेड रहिए। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डर जो है ना वो आपके बच्चे के पहले सोलो ट्रिप के जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे हटा दे, राइट? तो गो फॉर इट, ट्रस्ट योर बेबी एंड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड।
1: क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है,
0: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर. मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि मैं वापस आऊंगी और उस समय मैंने बात करी थी इम्पेशंस की, है ना. तो आप लोग इम्पेशंट तो नहीं हुए मेरा इंतजार करते हुए?
1: नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स डियर मस्ती दिल से.
0: और मेरी पहली चिट्ठी आज की कुछ ऐसी है कि एक लड़की जो 15 साल से नौकरी कर रही थी. She says, hi Renuka, I worked for almost 15 years. Like many women, I wasn't just managing my career. मैं मैनेज कर रही थी अपना घर, बच्चे, एजिंग पेरेंट्स, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, ग्रोसरीज, एवरीथिंग. और पिछले साल I lost my job. Not because I wanted to leave, I was retrenched. And I've been trying very hard to find another role, but nothing has worked out so far. सबसे बड़ी मुश्किल है not just staying at home. The hardest part is asking my husband for money. Every time I need something, even something small, I feel guilty, almost as if I've stopped contributing to the family. My husband has never made me feel that way. It's my own mind. How do I stop feeling this? Like I'm no longer adding value just because I'm not bringing home a salary. You know what? ये वाला टॉपिक मुझे पता है कि इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद मेनी वुमेन, स्पेशली दोज इन देयर 40s, 50s, क्योंकि आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, इनविजिबल लेबर, जी हाँ, ये टॉपिक इन सभी चीजों को टच करता है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके बताते हैं आपको. यू हैव नॉट स्टॉप्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग माई डियर, देयर इज अ लॉट मोर टू इट. ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड, दिस इज डियर मस्ती दिल से.

चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट।

आइए आइए, कहा था ना यही इंतजार करूंगी। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ और ये है डियर मस्ती दिल से। ब्रेक से पहले सवाल हमारे पास कुछ था अबाउट आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ एंड अबाउट दिस लेडी हु वर्क्ड फॉर 15 लॉन्ग इयर्स एंड हैड अ करियर, लेकिन लास्ट ईयर रिट्रेंच हुई, उनकी नौकरी गई और अब उन्हें लगता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है टू आस्क माय हस्बैंड फॉर मनी, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे टोटली वर्थलेस हो गई हूँ अपने घर के लिए। यू नो व्हाट, दिस लेटर रियली टच्ड माय हार्ट because I know there are many women listening to us today who are quietly carrying the same guilt. Bahut se saalon tak your salary was not the only thing you brought home. You brought stability. You managed birthdays, school ke schedules, hospital ke visits, family worries, emotional support and somewhere in between aapne apna career bhi banaya. The paycheck recognized only one part of your contribution, my dear. उसने तो रिफ्लेक्ट किया ही नहीं कि आपने और सब क्या क्या किया था। लूजिंग अ जॉब कैन मेक अस क्वेश्चन आवर वर्थ, बट लूजिंग अ जॉब डज नॉट मीन दैट यू हैव लॉस्ट योर वैल्यू। राइट नाउ आपका रोल बदल गया है लेकिन आपकी वैल्यू नहीं। एंड अबाउट आस्किंग योर हस्बैंड फॉर मनी, मैरिज इज नॉट अबाउट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, राइट, पार्टनरशिप होता है। इसीलिए तो कहते हैं देयर विल बी सीजंस व्हेन वन पर्सन कैरीज मोर फाइनेंशियली एंड देयर मे बी अदर सीजंस व्हेन द रोल्स आर रिवर्स्ड। देयर शुड नेवर बी अ शेम, किसी तरह का शेम नहीं होना चाहिए इन एक्सेप्टिंग सपोर्ट फ्रॉम समवन हु लव्स यू। देखते रहिए, ढूंढते रहिए अपॉर्चुनिटीज, कीप लर्निंग, बिलीव दैट दिस चैप्टर इज टेम्पररी, बट अंटिल देन प्लीज अपना मेजर, अपने आप का जो वर्थ है ना उसको मेजर मत कीजिए बाय योर मंथली सैलरी, बिकॉज द पीपल हु ट्रूली लव यू मेजर इट बाय योर प्रेजेंस, योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग यू कंटिन्यू टू डू एवरी सिंगल डे। कभी कभी जिंदगी हमें सैलरी से ब्रेक देती है, सेल्फ वर्थ से नहीं। ओके, सो जस्ट चीयर अप। रेडियो मस्ती 24/7 पर आई होप आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं और वो प्राइसलेस होती है।

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: You know what? ये जो movies बनती है ना, ये हमारी real life problems को देखकर ही बनती है. ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती है. किसी ना किसी की लाइफ में ये प्रोसेस चल रहा होता है जिसे ये मूवी में डाल देते हैं. डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ. और जब से मैंने आपके लेटर्स पढ़ने की शुरुआत करी है ना, तब से मुझे भी फील हो रहा है कि अरे फिल्मों जैसे किस्से तो आपके घर में चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं. एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती दिल से, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है एंड मैं उससे बहुत खुश हूँ, पर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे अच्छी तरह से जानता है. मेरी शादी फिक्स होने के बाद भी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से हिंट दे रहा है कि वो मेरी लाइफ में एंटर करना चाहता है, वो मेरे संग टाइम स्पेंड करना चाहता है. और मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए. अच्छा, बातें तो बड़ी फिल्मी चल रही हैं आपकी लाइफ में. हाँ, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो बहुत पुरानी कहावत है कि दो नाव पर सवारी नहीं करी जा सकती. अगर आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड ये हिंट्स आपको दे रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई आपने अपनी लाइफ में मैरिज जैसा डिसीजन किसी और के साथ लिया, राइट? लेकिन आपका दोस्त ये बातें समझ नहीं रहा है, तो आपको अभी के अभी शादी से पहले सॉर्ट करना पड़ेगा ये सब. ऐसा नहीं है कि दोस्ती नाते के खातिर आप उससे रिश्ता बनाए रखें और चीजें कंटिन्यू रहे, नहीं नहीं, ये आगे जाके बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन कर सकती है. सिर्फ एक इंसान से एक ही तरह का रिश्ता पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है. तो अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के अंदर ऐसी बातें नजर आ रही हैं, तो फॉर अ वाइल आप उनसे थोड़े से रिश्ते कट आउट कर दीजिए, बिकॉज वो आपकी लाइफ की भी हैप्पीनेस समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो. ऑन सेकेंड थॉट, अगर आपके मन में अभी इस बात को लेके क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आपने जिनके साथ आगे लाइफ में बढ़ने का सोचा है वो इतने खास नहीं है और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपको ज्यादा समझता है, तो आपको थोड़ा वाइसी वर्सा सोचना पड़ेगा. अदरवाइज मैं यही बोलूंगी, दो नाव पर सवार मत होइए, एक इंसान से एक रिश्ता रखिए, ऑन होल्ड डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ पाएं.

यू नो वॉट, कुछ बचपन वाली आदतें अगर आपके पचपन में भी नजर आ रही हैं, व्हाटएवर योर एज, ओके, तो समझिए आपका दिल बहुत मासूम है। हेलो, हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है वो पढ़कर मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिर्फ इनकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। और दिक्कत नहीं, ये तो बहुत प्यारी सी हैबिट है यार। जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उसमें लिखा हुआ है, हेलो डियर मस्ती, लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है एंड आज के टाइम पे मैं बहुत कुछ अफोर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज मेरे अंदर ना बहुत पहले से इनबिल्ट है और मैं उससे बहुत ज्यादा अनॉय फील करता हूँ, एंड दैट इज कि मैं आज भी बिना प्राइस टैग देखे कुछ नहीं खरीदता और आधे से ज्यादा चीजें मैं इसीलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि उसके प्राइस टैग से मुझे लगता है कि ये अमाउंट बहुत हैवी है। एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको बोलना चाहूंगी आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं, लिटरली सही डायरेक्शन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अजीब सी आदत है प्राइस टैग देखना, तो ऐसा नहीं है भाई, आपकी मेहनत की कमाई है, आप ऐसे ही कहीं भी किसी भी चीज में उड़ा देंगे क्या? ना ना ना ना ना, ठीक है, सोशल मीडिया की वजह से हमें बता दिया गया है कि जीवन सिर्फ 4 दिन का है, इसे जियो तो जियो, ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो, ना ना ना, बट इन रियल लाइफ हमें आगे से आगे का सोच कर चलना पड़ता है, ओके? और रही बात जब आपके मन मुताबिक कोई चीज मिल रही हो तब भी आप प्राइस टैग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ऐसी चीजों में थोड़ा सा एक्सेप्शन बना दीजिए कि ये आपकी विश लिस्ट में था तो इसको ले लेते बिना प्राइस टैग देखे। हाँ,

0: सके।
1: क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही खूबसूरत गाने जो आपको पुराने और नए मोमेंट्स की सोच में डाल देंगे। चलते रहेंगे डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 अलाइव। बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई नो एक के बाद एक हम सब आके आपके साथ हमारी आज की जो है इस एपिसोड की चिट्ठियां पढ़ रहे हैं। अब अंतरा की बारी है, सो बिल्कुल डाइविंग इनटू इट। डियर मस्ती, मेरे ऑफिस में एक कलीग है जो मुझे लगता है हर चीज में मुझे कॉपी करता है। मैं जो पहनता हूँ अगले दिन वो भी सेम कपड़े स्टाइल करके ले आता है। मैंने जो फोन लिया उसने भी वही मॉडल खरीद लिया। मैंने शूज का ब्रांड बदला उसने भी वो ले लिया। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस फ्रेंड्स के साथ भी वो क्लोज होने की कोशिश करता है। शुरू में मुझे फनी लगता था, बट ऑनेस्टली मुझे अब बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा है। क्या मुझे उससे कह देना चाहिए कि मुझे ये बिहेवियर उसका पसंद नहीं आता? काफी यूनिक सी प्रॉब्लम है, बट वेल माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो ओवर रिएक्ट तो नहीं ही कर रहे हैं। मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज थोड़ी सी अजीब ही लगने लगती। और ना ही ये सिर्फ कपड़ों या फोन की बात है। मुझे लगता है ये फीलिंग बहुत लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी कि हम सब इंस्पायर होते हैं कभी किसी एक्टर से, कभी किसी कलीग से, कभी किसी दोस्त से, और इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंस्पिरेशन और इमिटेशन के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है, और जब वो लाइन बार बार क्रॉस होने लगे तो डिस्कम्फर्ट होना बिल्कुल नेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक आइडेंटिटी खुद की होती है। हम अपनी चॉइसेस से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी इंडिविजुअलिटी से पहचाने जाते हैं। और जब बार बार लगने लगे कि कोई हर चीज आपकी रेप्लिकेट कर रहा है, तो नेचुरली लगता है कि क्या मेरी पर्सनल स्पेस मेरी नहीं रही। एक और पॉसिबिलिटी भी होती है, बाय द वे, हो सकता है वो कलीग आपको जेन्युइनली बहुत एडमायर करता हो। हो सकता है उसे ये लगता हो कि ये इसकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ, और उससे बिल्कुल भी अंदाजा ही ना हो कि आप इस बात से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसीलिए इंटेंट और इम्पैक्ट, उसमें फर्क समझना कई बार जरूरी हो जाता है। इंटेंट शायद अप्रिसिएशन हो, लेकिन इम्पैक्ट डिस्कम्फर्ट बन गया है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि क्या बात करनी चाहिए उनसे। अगर ये बिहेवियर अब आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है तो हाँ, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन के फॉर्म में नहीं, कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में, अकेले में, बिना उनका मजाक उड़ाए, बिना उनको अक्यूज किए कि मुझे एक बात शेयर करनी थी, शायद तुम्हारा इंटेंशन कुछ और हो, लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है कि मेरी काफ़ी पर्सनल चॉइसेस रिपीट हो रही हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, बस सोचा ऑनेस्टली शेयर कर लूँ तुम्हारे साथ ये बात। कभी कभी ना सामने वाले को सच पता ही, पूरी बात ही नहीं पता होती है कि उसका बिहेवियर किसी और को अनईजी कर रहा है, और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा, दैट इज माय थिंग। और अगर बात करने के बाद भी सब कुछ वैसा ही चलता रहे तो फिर शायद जवाब कॉन्वर्सेशन नहीं है, डिस्टेंस है। डियर लिसनर, याद रखिए कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी जीने का हक है, और उस इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना ईगो नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। होप दिस हेल्प्स। यह दिया मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

Alright, I am back on the airwaves. This is Radio Masi 24/7 and of course मैं हूँ रेनुका. अरे वही रेडियो वाला दोस्त ना जो आपको दुनिया भर से कहीं बेहतर समझ लेता है कभी कभी. Dear Masti, दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. तो चलिए इस अनजाने इंसान के पास अगली चिट्ठी क्या है ये उसके बारे में बताते हैं. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है स्पेशली पार्टनर्स और हस्बैंड वाइफ की. नहीं वेल हाय रेनुका, दिस मे साउंड लाइक अ स्मॉल इश्यू लेकिन मुझे तंग कर रहा है. माय हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ यू व्हाट्सएप ग्रुप्स विद हिज फ्रेंड्स. मैं भी हूँ उनमें. कभी कभी मैं वो चैट्स में जब देखती हूँ तो आई नोटिस दैट ही इज द लाइफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन. ही इज विटी, ही इज क्विक विद अ फनी रिप्लाई, ही कीप्स एवरीवन एंगेज्ड, एवरीवन लाफिंग. स्पेशली जो लड़कियां हैं उस ग्रुप में, व्हेन दे राइट समथिंग ही इज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड विद ह्यूमर. बट जब मैं मैसेज करती हूँ समटाइम्स माई टेक्स्ट रिमेन अनरेड फॉर आवर्स और आई गेट अ वन वर्ड रिप्लाई, बिजी. I know he's very busy. I know he works hard. I'm not asking for constant attention. But kahin na kahin mujhe hurt hota hai that strangers and friends seem to get the best version of him while I get whatever is left at the end of the day. Am I overthinking? My dear, Radio Masti 24/7 par jis tarah ke sawal aate hain na, mujhe to lagta hai yaar ye कितनी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी है. नहीं, हम ह्यूमंस कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. छोटी सी सिंपल सी बातों को भी कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि उसके बाद सोचते रहते हैं और फिर उसको एक हवा बना लेते हैं. यू नो हवा, आई हैवंट यूज दैट वर्ड इन एजेस बट यू नो व्हाट आई मीन. लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस आऊंगी बहुत ही जल्द और आपको बताऊंगी कि आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. स्टे ट्यून्ड.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। आइए आइए, आपका ये रेडियो वाला दोस्त फिर से आ गया है जो आपको दुनिया से कई बार बेहतरीन समझ लेता है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। एंड ऑन मस्ती 24/7 वो अनजाना इंसान इस टाइम पर मैं हूँ। थैंक्स फॉर दिस लेटर। अगर आप में से कुछ लोग अभी अभी आए हैं और उनको नहीं पता है हम किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तो वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द ईमेल दैट आई हैव गॉट फ्रॉम समबडी हु सेज कि शी इज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स विद हर हस्बैंड एंड आल्सो अदरवाइज शी वॉचेज हर हस्बैंड एज बीइंग द सेंटर ऑफ अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलते हैं। वहाँ पे ही इज विटी, इज ह्यूमरस, ही इज क्विक, ही मेक्स एवरीवन यू नो एंगेज्ड। लेकिन जब ये एक मैसेज भेजते हैं तो घंटों तक जवाब नहीं आता, या आता है एक वर्ड का जवाब विच सेज बिजी। सो माय डियर, मुझे नहीं लगता कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए परेशान हैं। आई थिंक आप एक बहुत ही डीप सा क्वेश्चन पूछ रही हैं, दैट इज व्हाई डज इट फील लाइक एवरीवन एल्स गेट्स हिज अटेंशन बिफोर आई डू, और एवरीवन गेट्स दैट साइड ऑफ हिम व्हिच आई डोंट सी। वेल द ट्रूथ इज मेनी ऑफ अस अननोइंगली बिकम मोर एक्सप्रेसिव विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और बहुत कैजुअल हो जाते हैं हम उन लोगों के साथ जो बहुत जो मैटर करते हैं, यू नो हु मैटर मोस्ट। वी अज्यूम दे विल अंडरस्टैंड, आई विल रिप्लाई लेटर, शी नोज आई लव हर, बट लव इट नीड्स एक्सप्रेशन टू, राइट, नॉट जस्ट अजम्पशन। एक रिलेशनशिप जो रेयरली टूटता है बिकॉज ऑफ वन अनआंसर्ड मैसेज, ऐसा तो होता नहीं है, राइट? It weakens when one partner starts feeling कि मैं priority नहीं हूँ। So instead of saying why do you reply to everyone except me, try saying I miss talking to you the way we used to। उसमें ना कोई blame game नहीं है, सिर्फ honesty है। And if your husband is listening today, remember your spouse shouldn't have to compete with a WhatsApp group for attention, my dear। Sometimes सबसे important message of the day होता है, not the funniest one। It's just that simple thing saying how are you, because in the end the people waiting for your reply are often the people waiting for your time। To bas hum sab online bahut badhiya connect ho gaye hain, but kabhi kabhi apne hi rishton mein typing thoda kam ho gaya hai, nahi? Radio Masti 24/7 par zara un rishton ki taraf dekhiye jahan par typing thodi zyada honi chahiye। Very good evening। Josh, man.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: मैंने पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: ओयो लास्ट लिंक। जी हाँ, इसी के साथ आज के डियर मस्ती दिल से का सफर बस यही तक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराल के साथ आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। पता है, जब मैं सारे लेटर्स यू सुन रही थी और खुद के भी लेटर्स देख रही थी जो मेरे पास आए थे, एक चीज मुझे बार बार फील हुई, वो ये थी कि हम सब अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, राइट? अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग लोग मिलते हैं, लेकिन इमोशंस सरप्राइजिंगली बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं। किसी को ट्रस्ट टूटने का दर्द है तो किसी को मदरहुड का ओवरवेल्म है, कोई बाउंड्रीज बनाना सीख रहा है तो कोई बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात बिना जज करके सिर्फ सुन ले। और शायद इसी बात ने मुझे एक चीज सिखाई है, दैट लाइफ तब आसान नहीं होती जब प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, लाइफ तब थोड़ी हल्की लगती है जब प्रॉब्लम्स बांटने के लिए कोई मिल जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम तो छोटी है या लोग क्या सोचेंगे या छोड़ो यार किसको बताने से क्या ही हो जाएगा। कभी कभी सोल्यूशन बाद में मिलता है, लेकिन दिल पे जो एक हैवीनेस सी फील होती है वो सिर्फ बोल देने से ही हल्का हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है जो शायद आप अपने घर वालों से नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड से नहीं कह पा रहे हो, या सिर्फ किसी न्यूट्रल इंसान से शेयर करना चाहते हो, तो याद रखिए, गूगल नहीं, चैट जीपीटी भी नहीं, डियर मस्ती दिल से ह्यूमन टच का, ह्यूमन बातों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी एआई मुकाबला नहीं कर सकता है। सो हम हमेशा आपके लिए यहाँ पर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9151893 पर। आपकी आइडेंटिटी हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी और बिल्कुल हम हर लेटर को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उन्हें काफी महसूस करते हैं। आज जाने से पहले भी ये बात कहकर जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू लीव लाइक दैट, खुद के साथ भी उतनी ही काइंडनेस रखिए जितनी आप दूसरों को देते हैं। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए काफी पेशेंट। कभी कभी इक्वेशन उल्टा करके देखिए, शायद जिंदगी थोड़ी और नरम, थोड़ी और सॉफ्ट लगने लगे। मैं आरजे अंश्रा एंड ऑन बिहाफ ऑफ रेणुका एंड नुपुर, डियर मस्ती दिल से फिलहाल साइनिंग ऑफ।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जिद्दी, इस शब्द से तो सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, बचपन से ही कितनी बार डांट पड़ी होगी, कितनी बार अब भी कहा जाता होगा, मतलब कि ऑल इन ऑल नेगेटिव वर्ड ही है ये। लेकिन ये जिद्दी वर्ड अगर किसी इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव हुआ तो उसने वो कर दिखाया कि उनकी कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, केम जे सिंगापुर, सारू जे अखा सिंगापुर, मारू जे, पहचान गए मुझे कौन? हाय, मैं आपका समर लेजेंड्स वाला रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर लेजेंड्स। इस बार हम जिनकी कहानी लेकर आए हैं वो जिद्दी थे जो वक्त के बहाव के साथ नहीं बहे बल्कि उसके अगेंस्ट बहे, अपना रास्ता खुद बनाया और हमें मजबूर कर दिया कि हम उनकी कहानी आप तक पहुंचाएं। कुल मिलाकर जिद्दी थे और अपनी जिद को पूरी करके ही माने। ऐसे ही जिद्दियों की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वैसे इस शब्द को नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इन लोगों ने उसे पॉजिटिव बना दिया और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो शख्स भी ऐसे ही है जिसकी लगन और मेहनत ने जिद्दी होने को लगन से जोड़ दिया, कुछ चाहना और पाने से जोड़ दिया। वो है मणिपुर की चुंगनई जान जो है आज हमारी लेजेंड। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? बात तो ठीक है, इनके बारे में तो कभी आपने सुना ही नहीं ना, जानना चाहते ना? अच्छा, अगर अब मैं बोलूं कि आज की हमारी लेजेंड है मैरी कॉम, अब तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इन्हें पहचाना ना हो। इंडिया को इतना गौरव, इतना सम्मान विश्व के खेल पटल पर इन्होंने दिलाया है तो कैसे न जाने हम उनको। लेकिन अक्सर जैसा होता है कि किसी एक क्षेत्र में अगर कोई नाम कमाता है तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली उस खेल से जुड़ी रही होगी, या उसकी अप्रोच होगी, या धनवान रहा होगा वो, या कोई तो एक्सपोजर रहा होगा। लेकिन मैरी कॉम के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट उनकी बॉक्सिंग की चॉइस एक मायने में कहें तो रेंडम ही थी। भाई, उनके पिता और माँ तो मणिपुर के एक छोटे से गांव में किसान थे और वहीं बचपन में मैरी भी उन्हीं की मदद किया करती थी खेती में। एक बिल्कुल साधारण सी लड़की, लेकिन एक साधारण सी लड़की में ही कहीं ना कहीं छुपी थी असाधारण प्रतिभा, असाधारण कीर्तिमान स्थापित करने की क्षमता, असाधारण लगन, असाधारण इच्छा शक्ति। तो इस असाधारण बालिका की हम बात करेंगे आगे, कैसे जिया मैरी ने अपना बचपन और कैसे शुरू हुआ उनका बॉक्सिंग का सफर। सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स समर के साथ। फिलहाल ये गाने आ रहे हैं आपके लिए।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
4: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
5: Kahaniyan unki, jinke hone se hum hain. Sune Legends Achievers mein Samar ki Zubani. Radio Masti 24/7 Live par.
6: वेलकम बैक, मैं हूँ समर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं। ये सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009 और समर आपके साथ हाजिर है लेकर एक लेजेंड की कहानी और ये है मैरी कॉम। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो गांव में रहती थी, पिता किसान थे और माँ और मैरी घर के काम खेत में भी पिता की मदद किया करते थे, उनके काम में हाथ बटाया करते थे। दरअसल मैरी 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। पूरा नाम उनका रखा गया मंगतेई चुंगनेईजान। चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए एक जिम्मेदार बड़े बच्चे की तरह घर में माँ की मदद भी करती थी और खेत में पिता की भी। स्कूल जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन गांव के लड़के डरते थे उनसे क्योंकि वो एकदम गुस्से में आकर तोड़ फोड़ पे उतार हो जाती थी। अच्छा, पिता को बड़ी कोफ्त होती थी इस बात से कि लड़की है, जब देखो तब लड़ती रहती है। अरे कहीं हाथ पैर टूट गए, कोई चोट आ गई हा? तो फिर इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और मेरे को शादी भी नहीं करेगा। पर ये सब मैरी को उस वक्त समझ नहीं आता था। उन्हें लगता था कि कोई लड़ेगा ना उनसे या कुछ गलत होगा तो दो मुक्के मारेंगी उसे और चुप कर देंगी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि उनका परिवार बड़ी तंग हाली से गुजर रहा है, तंगी तुरसी में जीता है। तो एक सपना था मन में कि एक दिन ऐसा हो जब उनके पास सब कुछ हो, अच्छा घर जिसकी छत टपकती ना हो, कुछ पैसे पास में हमेशा हो ताकि जरूरत के वक्त सोचना ना पड़े कि अब क्या करेंगे। लेकिन जहां उनका ये छोटा सा घर था, ये वो गांव नहीं था जहां वो पैदा हुई। दरअसल उनके पैतृक गांव में उनका जन्म तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वो गांव छोड़कर इस गांव में जो उनकी माँ का गांव था आ गई। एक छोटी सी जमीन लेकर वो और उनका परिवार खेती करने लगे। ऐसी ही जिंदगी जीते हुए आया वो वक्त जब उनकी शुरुआत हुई बॉक्सिंग में। क्या और कैसे हुआ ये सब बताऊंगा इस ब्रेक की बात। सुंदर ये रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैरी कॉम की कहानी समर की जुबानी।
7: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
8: किया।
7: कभी किसी को दिल दिया?
8: किया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर, हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू रात।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: तो ये साल था 2000 का। उन्हें पता चला कि उनकी कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिनमें जो स्पोर्ट्स रखे गए हैं उसमें से एक बॉक्सिंग भी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और मैं बात कर रहा हूं मैरी कॉम की। लेजेंड्स सुन रहे हैं आप मेरे साथ। मैरी इस वक्त तक चुप चुप के ट्रेनिंग करने लगी थी, तो उनको वहां जाने का बड़ा मन था जो उनकी कम्युनिटी ने जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया था ना। तो माँ तो उनकी सब जानती थी, लेकिन पिता को मनाने में जरा जोर तो आया, लेकिन आखिर पिता भी मान गए। मैरी ने इस कॉम्पिटिशन में जाने का फैसला किया, पर जाने में भी छोटी सी कहानी है। हुआ यूं कि जाने के लिए मैरी बस स्टॉप पहुंची तो उन्हें कहा गया कि बस में तो जगह ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनका जाना तो बहुत जरूरी है। तो कंडक्टर ने मजाक बनाते हुए कहा कि बस के अंदर तो जगह नहीं है, अगर जाना ही है तो छत पर बैठ कर जाओ। उसे शायद लगा होगा कि मैरी उतर जाएगी, कौन लड़की छत पर चढ़कर बैठती है बस की। लेकिन मैरी तो खुशी खुशी छत पर जाकर बैठ गई और उस टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया। और यही वो वक्त था जब उनका नाम MC मैरी कॉम पड़ा। जी हाँ, इससे पहले उन्हें सब उनके नाम चुन्नी जान से ही जानते थे। अब बनी वो मैरी कॉम और उन्हें मिला वो नाम जिससे वो अब तक अनजान थी। लेकिन जल्द ही ये नाम विश्व के खेल इतिहास के पटल पर एक नई इबारत लिखने वाला था। इसी सब के दौरान उन्हें मिले वो जो हैं जिन्हें मैरी कॉम कहती हैं रियल चैंपियन। कुछ अंदाजा लगाई अभी कौन है वो रियल चैंपियन? बताऊंगा इस ब्रेक के बाद क्या रही उनके मिलने जुलने की कहानी। सब कुछ सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स समर के साथ।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। और आज बात हो रही है एमसी मैरी कॉम की। गांव के स्कूल के बाद वो पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी। वहीं पर बॉक्सिंग करने से पहले मैरी एथलेटिक्स किया करती थी, वो खेला करती थी, लेकिन उसमें उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं। उनके एथलेटिक्स के कोच कहते हैं कि जब वो एडमिशन के लिए आई थी तो सोचने लगे कि एकदम पतली दुबली सी ये लड़की, हाइट भी ज्यादा नहीं है, तो इसे किस स्पोर्ट में डालूं। लेकिन वो कहते हैं कि तब भी लगन, मेहनत, डेडिकेशन तो उनमें बहुत थी। मेहनती इतनी थी कि एक बार जब उनके पास पकाने को चावल नहीं थे तो किसी से चावल या पैसे एक बार को उधार लेने के बजाय वो साइकिल उठाकर चल पड़ी अपने गांव। 4 घंटे साइकिल चलाकर गई और वहीं 4 घंटे लौटने में लगे। बाप रे बाप, 4 घंटे साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है लौटने के 4 घंटे और। तो मैं तो थोड़ा आराम पसंद इंसान हूं, इसलिए इतनी साइकिल चलानी तो दूर सोच भी नहीं पा रहा हूं। आपको क्या लगता है, आप होते तो क्या करते? आप सोचिए, मैं थोड़ा पानी वानी पीकर आता हूँ, सांस ही फूल गया मेरा तो। 4 घंटे साइकिल चलाकर गई, 8 घंटे साइकिलिंग एक ही दिन में, कमाल यार, कमाल है। तभी तो उनकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैरी कॉम की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स पर। मैं हूँ समर, ये है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज बात हो रही है एमसी मैरी कॉम की। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि मैरी किसी को अपने चैंपियन होने का क्रेडिट देती हैं। कहती हैं कि वही उनके असली चैंपियन, रियल चैंपियन है। वो है उनके हस्बैंड ओनलर। करियर शुरू होने के बाद जल्दी ही उन्होंने शादी कर ली थी, जल्दी ही बच्चे भी हो गए। लगा कि अब तो कोई करियर वरियर होगा नहीं, सब खत्म। वो भी बॉक्सिंग में, कोई चांस ही नहीं। कुछ ऑफिस जॉब्स के लिए अप्लाई भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन ओनलर ने उन्हें कमबैक करने के लिए मोटिवेट किया और ट्विंस बेबी डिलीवर करने के सिर्फ एक साल में उन्होंने बॉक्सिंग में कमबैक किया। अब आप सोच सकते हैं, बिना पार्टनर के सपोर्ट के ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ट्रेनिंग के लिए टाइम कैसे निकाला होगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम, फिर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना, इन सब के लिए लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है। और ओनलर मैरिज को बहुत ही आसान और छोटे शब्दों में डिफाइन करते हैं। कहते हैं मैरिज मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना और कम्युनिकेशन है। और ये बड़ा ही ऑब्वियस लगेगा आपको जब मैं आपको नेक्स्ट इंसिडेंट बताऊंगा। शादी के बाद काफी सारे लोग ओनलर के फादर को कहने लगे थे कि आपकी बहू को अब मना कर दो, अच्छा थोड़ी लगता है कि बहू आपकी बॉक्सिंग करे। इस पर वो कहते थे कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम नहीं है। वो जब जो करना चाहे, उसका जो मन करे, वो कर सकती है। वाह, ये होती है सोच, ये होता है सपोर्ट, ये होता है परिवार जो एक दूसरे के लिए होता है, न कि एक दूसरे को बांधने के लिए। मैरी के फादर इन लॉ के साथ हुई घटना ने मैरी को काफी झंझोड़ दिया था। क्या थी वो घटना, बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स।

शकन चारों ओर है, चलते जाओ। पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक घटना या कहें कि दुर्घटना जो ओनलर के पिता के साथ हुई, जिससे पूरे परिवार को बहुत झटका लगा, वही बताने के लिए मैं आ गया हूं। एक बार फिर से मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज मैरी कॉम की कहानी मेरी सुनानी। मैरी ने तो करियर गिव अप करने का सोच लिया था इस घटना के बाद। ओनलर के पिता को किसी ने किडनैप कर लिया था और बिना कुछ कहे, कुछ मांगे, कुछ बोले उन्हें मर्डर कर दिया। ओह, ये सुनना भी कितना स्ट्रेसफुल है। तो परिवार किस मानसिक स्थिति से गुजरा होगा हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन तब भी एक सही लाइफ पार्टनर की तरह ओनलर ने उन्हें संभाला और कहा कि उन्हें रुकना नहीं है, अपने करियर के जरिए अपनी फाइट जारी रखनी है। अगर तुम रुक गई तो लगेगा कि हम टूट गए, तुम्हें टूटना नहीं है। और इस तरह ओनलर के सपोर्ट से मैरी आगे बढ़ती रही और बनी दुनिया की पहली महिला बॉक्सर, जो 6 बार चैंपियन बनी, वर्ल्ड चैंपियन, पहली महिला बॉक्सर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। एक माँ साथ ही 37 साल की उम्र जब खिलाड़ी रिटायर होने की सोचने लगता है, ऐसे में वो आज भी कई गोल्ड अपने नाम करने की दौड़ में बराबर दौड़ रही है, बिना रुके, बिना थके। पर मैं अभी थोड़ा सा थक गया उनकी बात करते करते, चाय कॉफी कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, कॉफी पियेंगे। तो अंतरा जी, कॉफी बनाकर रखिए, मैं आ रहा हूँ। आप ये गाना सुनिए, मस्त रहिए। ये म्यूजिकल ब्रेक सिर्फ आपके लिए। ये शो कैसा लग रहा है आपको, हमें जरूर बताएगा। कहाँ के बताएंगे, आप तो सब जानते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर। आइए आइए।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: एक ऐसे लेजेंड की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जिनकी कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी दिखाया गया है। वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, और आज कहानी मैरी कॉम की। सुन रहे हैं आप मेरी जुबानी। मैरी कॉम फिल्म के लिए जब प्रियंका उनसे मिलने गई तो वो एक अलग ही छवि लेकर गई थी। प्रियंका को लगा था कि मैरी एकदम ट्रैक पैंट्स पहने हुए होंगी, कुछ ऐसे आएंगी उनके सामने, लेकिन वो आई एक शिफॉन पिंक ड्रेस में, स्ट्रेट हेयर, रेड लिपस्टिक, ग्लॉसी नेल पेंट के साथ। प्रियंका कहती हैं कि मैंने पहली मुलाकात में पहली चीज उनके बारे में जो सीखी थी वो ये कि बॉक्सिंग में अगर हैं तो जरूरी नहीं है कि मैनली हो जाए, फेमिनाइन रहते हुए भी मैरी कॉम हो सकती है और मेडल्स जीत सकती है। सो ट्रू। वैसे प्रियंका का इस फिल्म से अटैचमेंट अलग ही रहा है, क्योंकि ये वो लास्ट फिल्म थी जिसकी नरेशन उनके फादर ने सुनी थी और कहा था कि टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन बन के फिल्म मत करना प्लीज। मैरी कॉम का किरदार दिखाने के लिए वो शिद्दत लाना जो जरूरी है, लगे कि तुमने रोल कन्विंसिंगली किया है, और प्रियंका ने किया भी वही, अपना 100% दिया, और 100% मैरी ने भी दिया। वरना अपनी लाइफ के हर हिस्से को खोल कर रख देना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। जिंदगी पूरी उजागर हुई तो कुछ स्याह पन्ने न खुल जाए, कुछ बातें न बन जाए, ये डर हर किसी को होता ही है। भाई जब आपकी बायोग्राफी बन रही होती है तो जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छुपाया जाना चाहिए, लेकिन मैरी ने डरना सीखा ही नहीं, सीखा है तो सिर्फ जीतना। ठीक कह रहा हूं मैं, ऐसी ही और भी ठीक और सही बातें मैं करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मिलिएगा यहीं पर। यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैरी कॉम की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक खास बात बताऊं आपको, ऑफ कोर्स मैरीकॉम की, मैरीकॉम की तो कहानी सुना रहा हूं मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स और मैरीकॉम की कहानी के साथ एक बार फिर से हाजिर है समर, ऑफ कोर्स आपका समर। मैरीकॉम की एक खास बात यह है कि वो स्किपिंग करती हैं ऐसे जैसे कोई चिड़िया। हाँ सच में, वो स्किपिंग करते करते कुछ नए नए तरह की स्किपिंग टेक्निक्स यूज करती हैं। ऐसा लगता है कि ये कैसे किया यार। और तो और स्किपिंग से एक घंटे में वो 2 किलो वेट तक कम कर सकती हैं। अब क्या बोलूं यार सारे एडजेक्टिव्स खत्म। भैया मेरे पास तो नहीं है, कमाल की है वो। मैरी ये भी कहती है कि बॉक्सिंग रिंग में ये स्किपिंग काफी सपोर्ट करती है, आपके फीट मूवमेंट लाइट हो जाते हैं जिससे फाइट में आपकी मूवमेंट लाइट हो जाती है और एक बॉक्सर खुद को रिंग में अच्छे से हैंडल कर लेता है। भाई रस्सी तो हमने भी बचपन में बहुत कूदी है लेकिन ये नहीं पता था कि इतने काम की है ये। वैसे उनकी रुचि स्पोर्ट्स के अलावा म्यूजिक में भी है। रॉनी सुन रहे हो, रस्सी कूदना यार थोड़ा वजन कम हो जाएगा। चलिए मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि उनकी स्पोर्ट्स के अलावा म्यूजिक में भी तगड़ी रुचि है, खास तौर से हिंदी के पुराने गाने उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें से उनका पसंदीदा गाना है अजीब दास्तां है ये कहां शुरू कहां खत्म, जिसे वो अक्सर गाती हैं गुनगुनाती हैं। आप भी सुना चाहेंगे तो ये सुन लीजिए।

0: और अभी ये गाने भी सुन लीजिए जो हम आपके लिए लेकर आए, सिर्फ आपके लिए, रेडियो मधुबन 24/7 लाइव पर।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए
2: सुनिए
1: कहिए
2: कहिए ना।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: एमसी मैरीकॉम की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। शो का नाम है लेजेंड्स। आज ऑफकोर्स बात हो रही है मैरीकॉम की। आज मैरी एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फैमिली लीड कर रही हैं। उनके 3 बेटे हैं, पहले 2 जुड़वा बच्चे हैं, रियांगपा और नाइराई, और तीसरा है

प्रिंस, नाइनाई के दिल में सुराख का जब पता चला तो उसका इलाज करवाना था। तब मैरी एक कॉम्पिटिशन के लिए कैंप में थी। जबूनलर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं उसके साथ हूं और मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस निश्चिंत होकर उस कॉम्पिटिशन पर फोकस करो, उसे जीतना है तुम्हें। तब मैरी को भी विश्वास था कि वो उनके बेटे को संभाल लेंगे। फिर भी खुद से लड़कर अंदर के युद्ध पर विजय पाकर उन्होंने वो फाइट भी जीती जो रिंग में वो लड़ रही थी, क्योंकि किसी और पर विजय पाने के लिए पहला पड़ाव भी यही होता है कि आप खुद विजयी हों आपके भीतरी द्वंद से। और साथ ही उनकी तैयारी और ट्रेनिंग तो है ही कि जो उन्हें चैंपियन बनाती रही है। उनके नाम कितने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको गिनने के लिए लिस्ट बनानी पड़े तो आप तैयारी करके रखिएगा। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, तब तक आप भी कॉपी पेन ले आइए। मिलता हूं आपसे यहीं पर रेडियो 24/7 लाइव गेम महफिल। नाम है इसका लेजेंड्स, मैं हूं समर आपके साथ।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वो है मैग्निफिसेंट मैरी, जिनकी कहानी सुना रहा है समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। वेलकम बैक। अब वो नाम क्यों दिया गया मैग्निफिसेंट मैरी, उन्हें क्यों कहा गया, आप समझ सकते हैं उनके अचीवमेंट्स की वजह से। भाई इन्हीं में से कुछ एक के नाम मैं आपको गिना देता हूँ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड, मैग्निफिसेंट मैरी, आईबा अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबा ने मैरी कॉम को अवार्ड दिया, पहली आईबा लेजेंड्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। और आईबा ने ही मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया 2016 के आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। अब क्या है कि मैं खुद ही समझते हुए रुक जाता हूँ, क्योंकि उनके नाम से जुड़े अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की फेहरिस्त बहुत लंबी है साहब। पर आपको छोड़ देता हूँ इन गानों के साथ और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा एक और लेजेंड की कहानी लेकर, एक महान हस्ती की बातें और किस्से लेकर। तब तक आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और जाते जाते कर जाइए कुछ वादे। आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन एज मी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
0: Raat akeli hai. Raat akeli hai to kya? Hum to aap.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

कल्चरल सोसाइटी का एक ग्रुप बाहर जा रहा है, आप लोगों में से जो साहिबान हिस्सा लेना चाहें वो अपने अपने हाथ उठाएं।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। कोई मुझसे पूछेगा कि मेरा इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अपने आप को 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगी। हाँ, हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम, रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि इतने अच्छे मार्क्स मुझे इसलिए मिलने चाहिए बिकॉज आज सुबह सुबह नींद खुलने के साथ मैंने मोबाइल पर एक ऐसी रील देखी जिसमें साउथ इंडियन फूड, बहुत सारा डोसा, थाटे इडली एंड सांभर वड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ना दिखाई गई थी, है ना, बहुत डिलिशियस। और मैंने देखते ही देखते इमेजिन कर लिया कि मैंने तो ये खा लिया है जबकि मैंने तो वही अपना ब्रेड बटर ये वो एवोकाडो एंड ऑल दैट ये सारा विलायती खाना खाया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने हाइपर रियल रील देखी थी ना, वही मैंने कंज्यूम किया। कैन यू सी, हाँ, मेरा इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रांग है। आज इनपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: पुराने जो हमारे पढ़ाई के नोट्स हैं वो अगर मिल जाएं तो क्या पढ़ने बैठ जाओगे? नहीं ना, लेकिन पुरानी मूवीज देखने आप जरूर बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि मूवीज में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है यार, वो गो विद द फ्लो वाली चीज आ जाती है। हाँ, सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि हर कोई कह रहा था थ्री इडियट जैसी पुरानी, नॉट येट बहुत पुरानी मूवी जो है वो री रिलीज होने को है। इवन थिएटर्स में 4 सितंबर को रिलीज हो जाएगी। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स ने इसे क्लैरिटी के साथ बोल दिया है। तो अफवाहों पर यकीन ना करें बल्कि मेरी बातों पर करें। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। आप जब अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर एकदम अफलातून काम कर देते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप ही से काम कराया जाएगा। लेकिन ये बॉलीवुड और हॉलीवुड और ग्लैम इंडस्ट्री में मुमकिन नहीं है। आप चाहे जितना अच्छा काम कर ले, वक्त रहते आपका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ना विद्या बालन स्टारर कहानी मूवी जो है दो दफा देख ली है। हाइपर क्लाइमेक्स के साथ इस मूवी ने फीमेल सेंट्रिक रहते हुए बंगाल से उठकर हर तरफ की कहानियां जो है वो हमें दिखा दी है। लेकिन इस मूवी का जो अब थर्ड पार्ट प्लान किया जा रहा है, उसमें विद्या बालन नहीं होंगी, उसमें होंगी कौन? यामी गौतम। एंड बाय द टाइम हमने यामी गौतम को इस तरह इस रोल में तो देख ही लिया है कि वो सिंगल हैंडली फीमेल सेंट्रिक मूवीज को अच्छा खासा पिकअप दे सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं, राइट? आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करने के लिए आ चुकी है बढ़िया गानों के साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
3: ऑल इज वेल।
2: आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
1: चेक इट आउट।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: सर दर्द हो रहा है चाय पी लेती हूँ, कमर दर्द हो रहा है चाय पी लेती हूँ, नींद आ रही है चाय पी लेती हूँ, ऐसे वाले डायलॉग मैंने तो बहुत बार बोले लेकिन अब बाय द टाइम मैंने कंट्रोल कर लिया है खुद को। लेकिन समटाइम्स हमें बॉलीवुड ने टीच किया क्या कि चाय और दवाइयों से ही नहीं बल्कि जादू की झप्पी से भी बहुत सारे इलाज किए जा सकते हैं। रेडियो मजीर 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली आज है बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त का बर्थडे। ऑन दिस ओकेशन मैंने उनकी एक फेमस सी मूवी का एक फेमस डायलॉग निकाल कर रख लिया है, मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ और आपको उनकी शानदार सी मूवी का नाम बताना है कि ये कौन सी मूवी से था डायलॉग। तो क्विकली अपने कान थोड़े से करीब लेकर आइए।
3: वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या?
2: बिल्कुल, अगर पहचान गए हैं आप इस डायलॉग को तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डीएम करके बता दो मेरी जान। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.